गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर, कसं काय? एकदम मस्त मज्जेत, फर्स्ट क्लास आसन असायलाच पाहिजे. तुम्ही ऐकत आहात MCM 90.8 FM. आणि आठवड्यातला मिडल दिवस आहे आज, म्हणजे गुरुवार आहे. बाय द वे, कसं काय मग एकदम आजचा दिवस तुमचा? आय होप की चांगला जाईल असं मला वाटतंय, कारण की कुठेतरी मी वाचलं होतं की यार, जर तुम्ही तुमच्या दिवसाची सुरुवात पॉझिटिव्हने केली ना, तर पूर्ण पॉझिटिव्ह वाईब तुमच्या आसपास येतात. आणि कसं आहे, सगळे जे मोमेंट्स असतात ते आणि जे तुमचं काम असतात ते परफेक्ट होतात. म्हणजे काय, देखो सबसे पहले इम्पॉर्टंट चीज है की सुबह उठते ही ना सबसे पहले पॉझिटिव्हिटी को आपने गले लगाना चाहिए. आय नो सुबह उठने के बाद पहले तो आप अपने मोबाइल को गले लगाते हो, सच कहा ना? उठते ही सबसे पहले आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो कि किसका मैसेज आया किसका नहीं. सच बताओ, किसी का नहीं आता है. नहीं नहीं, आप जिसका इंतजार कर रहे हो तो उसका बिल्कुल नहीं आता है गुड मॉर्निंग का मैसेज. तो उठते बरोबर मोबाइल मत यूज करो, पहले अपने आप को जरा आईने में देखो और खुद से कहो कि यार आज का दिन एकदम बेस्ट जाने वाला है. तो देखिएगा फिर आने वाला वक्त दिन एकदम अच्छे से गुजरने ही वाला है, वरना आप उठते ही ना तो मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो भाई उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव कोई थॉट वगैरह नजर आएगा, वो आप रीड करोगे और आपके दिन की शुरुआत वैसे सैडनेस से होगी. तो ऐसा मत कीजिए, बस पॉजिटिविटी के साथ आज के दिन का आगाज कीजिए. बाकी तो बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, लेकिन आपका मूड फ्रेश करने के लिए पहले बढ़िया से गानों का सिलसिला आपके सामने आएगा. तब तक स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो. All

0: 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाइप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
1: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक स्कूल था गांव में, वहां एक छोटा सा लड़का पढ़ता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत सीधा साधा था, लेकिन बाकी बच्चे उसे हर बात पे चिढ़ाते थे। कोई कहता था तो बहुत स्लो है यार, कोई कहता था तेरा दिमाग खराब है यार। हर दिन ये सुनकर अर्जुन चुप रहने लगा। धीरे धीरे उसने सवाल पूछने बंद कर दिए, खेलना बंद कर दिया और खुद पे यकीन भी करना छोड़ दिया। एक दिन स्कूल में नई टीचर आई, शांत, समझदार और मुस्कुराती हुई। उन्होंने सब बच्चों को गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी सुनाई और खासतौर पर एक बंदर की तरफ इशारा किया, बुरा मत कहो। उन्होंने कहा, हमारे शब्द किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सोचो अगर गांधी जी के 3 बंदर स्कूल जाते तो क्या करते। बच्चों ने चुपचाप अर्जुन की तरफ देखा और पहली बार उस दिन एक लड़की ने अर्जुन से कहा, तो बहुत अच्छा स्केच निकालता है, हमें भी सिखा देना। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वो दिन एक मोड़ था अर्जुन की जिंदगी में नया मोड़ लाने के लिए। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक अच्छा इरादा और थोड़ी सी समझदारी किसी की दुनिया बदल सकती है। तो आज गांधी जी के उस बंदर को याद रखिएगा, बुरा मत कहो, क्योंकि शायद आपका एक मीठा बोल किसी अर्जुन के मन में उम्मीद जगा सकता है। आप भी अगर किसी को बहुत बुरा कहते होंगे, बोलते होंगे या तो फिर उसे चिढ़ाते होंगे, मत कीजिएगा। आपकी वजह से वो अपनी उम्मीद भी खो देगा। उससे थोड़ी सी प्यार से बात कीजिएगा, देखिएगा फिर उसकी उम्मीद किस लेवल पर जाती है। आई होप कि इससे आपको कुछ सीख मिली होगी। तो कहानियों का सफर आपको कैसा लगता है जरूर बताना। डीएम करना इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, और सुनते रहना एमजीएम 90.8 एफएम।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: Let's talk about mental health, क्योंकि mental health well तो जिंदगी all is well. You are listening MGM 90.8 FM. अपने साथ डॉक्टर वारसी करतगांवकर मैम, उनके साथ हम बात करते हैं जो कि HOD है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी. तो मैम, आज का सवाल ये है कि क्या वर्क प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी इनमें तब्दील हो सकता है क्या?
1: डेफिनेटली होता है, क्योंकि स्ट्रेस अगर लंबे अरसे तक हमारी जिंदगी में रहा तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है. और अगर उसको हमने एड्रेस नहीं किया कि ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, लेकिन हम हेल्प भी नहीं ले रहे हैं और हम उसी चीज़ में जूझ रहे हैं, वी आर सफरिंग फ्रॉम इट बट वी आर स्टिल नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, तो इन दैट केस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री तक बदल सकती है. तो ये धीरे धीरे फिर क्लिनिकल डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले सकता है. तो इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि हमें अगर थोड़ा भी स्ट्रेस लग रहा है तो वी शुड गो एंड सीक हेल्प.
0: तो वर्क लाइफ का जो स्ट्रेस है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ भी आपको लेकर जा सकता है. तो इतना स्ट्रेस में मत रहिएगा, वर्क लाइफ को वर्क लाइफ जैसा रखिए, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए. और बाकी सवाल आपके भी होंगे तो DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर, और सुनते रहिए.

चल कहीं दूर निकल जाए। इस गाने की फरमाइश की है दूसरा आदमी इस फिल्म से गाना है। और ये फिल्म आई थी 1977 में, तकरीबन 2 घंटे की फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर और राखी जी ने काम किया था। और ये जो गाना है चल कहीं दूर निकल जाए, ये गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। और इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने के अंदर रफी साहब ने भी एक छोटा सा पार्ट गाया है जो कि गाने के 3rd मिनट के बाद आता है। अब सुनने के बाद आपको पता चलेगा ही। तो चलिए फिर आप फरमाइश पर गाना एंजॉय करते हैं। आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हम तक पहुंचाइए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और सुनते रहिए।

0: 8888992688।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
0: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक। डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

126 साल में जो नहीं हुआ था वो इस साल हुआ है। क्या हुआ? आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। तो क्या हुआ? वो यही हुआ कि भाई सूखा सूखा सूखा जून हमारा गुजर गया। आई नो अभी जुलाई का महीना शुरू है, लेकिन 1 जून से 30 जून के दरमियान कितनी बरसात हुई वो हम सभी को पता है, और आधा जून तो पूरा गर्मियों में हमारा निकल गया था। और ऐसी सेम सिचुएशन आ गई थी 1901 में। जी हाँ, 1901 में भी जून का महीना कुछ ऐसे गुजरा था जब सबसे कम बरसात हुई थी, 40% से भी कम। तो उसके बाद 2026 में ये ऐसा महीना गुजरा है जिसमें सेम सिचुएशन आई है और आधे से ज्यादा जून बिना बरसात के गुजरा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 126 साल का सबसे सूखा जून ये 2026 का था। वाह, कॉम्बिनेशन तो है 126 और ये 2026। अब जुलाई का महीना शुरू है, आई होप कि इस महीने में तो भी अच्छी खासी बरसात शुरू हो जाए और जो प्लान हमारे अधूरे थे मानसून में बाहर घूमने के वो भी मुकम्मल हो जाए। तो बताइए कहाँ घूमने का प्लान है आपका? DM ऑन इंस्टा RG अदनान एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो अभी प्ले होगा। तब तक स्टे ट्यून।

0: इस महीने जुलाई से आपको कुछ चीजों के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, क्या कुछ है बताऊंगा ना। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आधार के मामले में, देखो आधार कार्ड में ना, तो अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करना होता था तो वहाँ पर 75 रुपीस चार्जेस आपको पे करना पड़ते थे, याद है। तो अब ये चार्जेस पे करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम फ्री और फ्री तरीके से आप अपना आधार कार्ड का ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, यानी कि अपडेट कर सकते हो। और ये जो फ्री वाली ऑफर है ये 31 दिसंबर 2026 तक शुरू रहेगी, तो इस साल के एंड तक ये ऑफर दी गई है। तो अगर आपको भी आपके आधार कार्ड का मेल आईडी चेंज करना है तो बिल्कुल कीजिएगा फ्री में। और हाँ, एक और चीज में थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है, वो है पासपोर्ट निकालने का। पहले 1500 रुपए इसकी फीस थी, अब ये बढ़कर 2500 रुपए हो गई है इस जुलाई मंथ से। और आपको तत्काल में पासपोर्ट चाहिए तो जिसकी पहले फीस थी 3500, वो अब हो गई है 5000 रुपए फीस। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस है जो कि अभी इस महीने से शुरू हो गए हैं। तो याद रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा आरजे अदनान के साथ। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 CIDCO Chhatrapati Sambhajinagar.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM University आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट MGMU.ac.in।

0: ये सो कॉल्ड आशिक प्रजाति, जी हाँ मैं आशिक प्रजाति इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी एरिया में शुरू हो जाते हैं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है। देखो मैं पहले बता दूं कि मैं कुछ प्यार का दुश्मन नहीं हूँ और मैं तैयब अली भी नहीं हूँ।
1: तैयब अली प्यार का दुश्मन है,
0: बट उन कपल्स का मुझे बहुत गुस्सा आता है जो पब्लिक प्लेस के ऊपर सरेआम शुरू हो जाते हैं कुछ भी चीजें करने के लिए। एक ऐसा ही केस सामने आया अपने बीबी का मकबरा, अपना टूरिस्ट प्लेस है भाई, वहाँ पर फैमिलीज आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग घूमने आते हैं, तो कई कई कपल्स बसून झाड़ा खाली प्रेम कर देते। अरे भावनो बहिनो, झाड़ा वर प्रेम करा, झाड़ा खाली बसून प्रेम करू नका, पण हे ना कळतच नाहीये। आणि फक्त आपलं बीबी का मकबराच नाही, तुम्ही आपल्या शहरातील वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी जर गेलात ना तर तुम्हाला हीच परिस्थिती बघायला मिळणार आहे। सो आप सिद्धार्थ गार्डन में जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे नजारा मिलेगा। बामू यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड में जंगल है ना, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तो बहुत सारे कपल्स आपको दिखाई देंगे। पता नहीं ऐसी क्या गर्मी होती है जो कि पब्लिक प्लेस पर ही उनकी निकलती है। भाई किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत बुरा फंसोगे। और ऐसे कुछ कपल्स पकड़े गए थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह तो कुछ जो कुछ होगा वो होगा। बट मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक प्लेस पब्लिक की होती है, वहाँ पर आपके प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने की प्लेस नहीं होती, तो इतनी बात तो समझिएगा। स्टे ट्यून।

बच के रहना रे बाबा, बच के रहना है, वरना आरटीओ तो आपको देख ही रहा है। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और बच के रहना मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो, हम सभी को अपने गाड़ियों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगानी थी और इसकी डेडलाइन बढ़ते बढ़ते सहूलत देते देते आरटीओ भी थक गया था और उन्होंने फाइनली 30 जून की डेडलाइन दी थी। और अब जून खत्म हो चुका है, अब शुरू होगा आरटीओ का एक्शन मोड। यानी जिस गाड़ी पर ना तो एचएसआरपी नंबर प्लेट आरटीओ को नजर नहीं आएगी, उनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे और फाइन वसूल करेंगे। देखो भाई, जब आपके पास वक्त था तब उन्होंने कहा था बड़े प्यार से, फिर थोड़ा स्ट्रिक होकर और थोड़ा टाइम भी देकर कि आप अपने गाड़ी पर नंबर प्लेट बिठाइएगा। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं यार, बिठाएंगे ना, अभी क्या ही जरूरत है। अब देखते देखते डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है और अब नंबर प्लेट कैसे बिठाओगे भाई? उसके लिए तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी बंद है क्योंकि डेडलाइन खत्म हुई। तो आप करे तो करे क्या, बस फाइन भरो आप, उसके बाद क्या ही कर सकते। तो इसलिए कह रहा था कुछ काम वक्त पर ही होने चाहिए, वक्त गुजरने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो आरटीओ की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, सो फेस कीजिएगा इसको और सुनते रहिएगा।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड आता मानसिक आजार लपवायची नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
2: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
1: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या
2: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट ऑन 8889 2688.
3: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
4: MGM कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाइप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलेबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
5: एडमिशन ओपन फॉर बी ए एम सी जे, बी ए मल्टी मीडिया जर्नलिज्म, बी ए इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा और एम ए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.
6: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
7: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
8: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रैक्टिकल स्किल्स.
7: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशन से अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेंसर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इंस्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग.
8: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
7: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

0: इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ देते हैं। You are listening MGM 90.8 FM. एक रिपोर्ट में ऐसा है कि 2026 और 27 में इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, तो उसके अंदर तकरीबन 5 से 10 या 20 प्रतिशत इंक्रीमेंट हो सकती है इस साल। अभी इंक्रीमेंट का सीजन है और ये होने भी वाली है, लेकिन ये होने के बावजूद भी बहुत सारे कंपनियों के एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ देते हैं अच्छी पगार होने के बावजूद भी। 55% लोकांचा असं म्हणणं आहे की त्यांना आता हे ऑफिस सोडायचं आहे। अब सवाल ये उठता है की ऐसा क्यों होता है, एम्प्लॉयना पगार बढ़कर भी मिलता है लेकिन जॉब छोड़ देते हैं? बिकॉज वहाँ का ऑफिस कल्चर और वहाँ का सो कॉल्ड बॉसगिरी वाली चमचागिरी, इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ना प्रेफर करते हैं कि भाई आप मुझे पगार कितनी भी दो लेकिन हम ऐसे कल्चर में काम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में हमें देखने को मिलता है। हालांकि सो कॉल्ड बॉस लोग ऐसे होते कुछ कुछ जो खुद को ना राजा समझते, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि यार उन्हें लगता है कि वो उस कंपनी के राजा है और हम उनके पास एम्प्लॉय बोल के काम नहीं करते, एक नौकर बोलकर काम करते हैं और गदा मजदूरी जैसी मजदूरी वो करवाते हैं। इस वजह से एम्प्लॉयज को भी लगता है भाई 4 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। तो इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज इंक्रीमेंट के बावजूद भी कंपनी छोड़ना प्रेफर करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा ना, क्योंकि कॉर्पोरेट में ये सब तो चलता है भाई और सभी का दर्द सेम होता है। क्या है ना, सीनियर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरा एम्प्लॉय ना बस काम करते रहना चाहिए, भले मैं उसको पगार दूं या ना दूं, और उसने बस चापलूसी करनी चाहिए या फिर मेरे पास आकर हाजी हाजी करना चाहिए। तो ये ईमानदार एम्प्लॉय को और मेहनत करने वाले एम्प्लॉय को ये नहीं जचता है। तो आपका क्या इरादा है इस सीजन में, इंक्रीमेंट के बाद आप जॉब छोड़ोगे या उसी कंपनी में जॉब करोगे? डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी, एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी, एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
1: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM University आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM University किंवा विजिट mgmu.ac.in।

गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। असल में गाना हीर से रांझे की तरफ इशारा कर रहा है। जब रांझा को हीर नहीं मिली तब वो उसके प्यार में जोगी बन गया, फकीर बन गया। इस बात पर कई सारे गाने बने हैं। रमता जोगी ये उसमें से एक गाना। रमता जोगी का मतलब था वो फकीर, वो साधु जो कि सिर्फ घूमता रहता है, कहीं रुकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि हीर की शादी कहीं और करवा दी गई थी और इस गम में रांझा जंगलों में घूमता रहा और एक बाबा के पास आ पहुंचा और उनसे कहा कि मुझे मेरे हीर से अलग कर दिया गया है।

0: इसीलिए कहा गया है।
1: मैं प्रेम का प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया।
0: सो कुछ ऐसी कहानी थी इस रमता जोगी गाने की। सो चलिए फिर अब एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट गाना। गानों के किस्सों में और भी हम ऐसे कई सारे गाने आपके सामने लाएंगे और उसके अलग अलग किस्से हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएफ 90.8 एफएम।

0: घर मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ
1: सततची चिंता अति विचार करणे भीती वाटणे धास्ती बसणे भास होणे घाबरणे संशय करणे शंका येणे चिडचिडपणा एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे मंत्रचाळेपणा व्यसनधीता लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे वैवाहिक समस्या या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध आजच भेट द्या
0: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपती संभाजीनगर अंतरुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपती संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688
2: क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
0: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफटॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर बीड बाईपास रोड छत्रपति संभाजीनगर
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 9404474266 or visit mgmu.ac.in.
1: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
2: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाइ नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
3: एडमिशन ओपन फॉर बीए एमसीजे, बीए मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, बीए इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा और एमए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.
4: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
5: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स.
4: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याचबरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनियरिंग.
5: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE.
4: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
2: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाइप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
3: एडमिशन ओपन फॉर बीए एमसीजे, बीए मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, बीए इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा और एमए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट एमजीएम कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.
4: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
5: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स.
4: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला. आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग.
5: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE.
4: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट and control engineering, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

0: कहने लगे,
1: मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे।
0: तो बातें सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की होती है।
2: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
0: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इन को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम।

0: रहने दो।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
3: मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे,
2: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है एफजीएम 90.8 एफएम की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: एफजीएम 90.8 एफएम
4: साथ है।

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। गुड इवनिंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन शानदार रहा होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त भी रहा हो तो अब समय है थोड़ा रिलैक्स होने का और खुद के लिए कुछ पल निकालने का। आप सुन रहे हैं हमारा प्यारा सा शो जहाँ अगले कुछ समय तक रहेगा शानदार संगीत, अच्छे बातें और आपका साथ। चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हो, दोस्तों के साथ हो या फिर घर पर आराम कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आपकी ये शाम और भी खूबसूरत बन जाए। जिंदगी की भागदौड़ में छोटी छोटी खुशियां ही हमें मुस्कुराने की वजह देती है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो तैयार हो जाइए बेहतरीन गानों और शानदार माहौल के लिए। अगर आपका कोई पसंदीदा गाना है या आप किसी अपने को कोई प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हो सकता है आपका संदेश आज पूरे शहर तक पहुंचे। फिलहाल मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे मनीषा। आप सुन रहे हैं MGM 94.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज अगर आपके शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही है या फिर इससे पहले हल्की बारिश हो चुकी है तो एक सिनेरियो महसूस कीजिए। सुबह की शुरुआत और भी खास हो जाती है इस हालात में। ठंडी हवा, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और बारिश की हल्की सी फुहार, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें मुस्कुरा कर गुड मॉर्निंग कह रही हो। ऐसे मौसम में चाय की एक गर्म प्याली, खिड़की के पास कुछ पल और आपके पसंदीदा गाने, बस दिन की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती है। अगर आप ऑफिस, कॉलेज या काम पर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना मत भूलिए। ऐसे मौसम में सड़कें फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलिए और सुरक्षित भी रहिए। अगर आज आपको थोड़ा आलस महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, बारिश का मौसम ऐसा ही होता है, लेकिन एक प्यारे से मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। और ऑफ कोर्स इस शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम तो आपके साथ है ही, हमें तो बस मौके की तलाश रहती है कि आपके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट लाई जाए। इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते हैं शानदार संगीत के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो इस बारिश वाली फीलिंग को और भी गहरा और यादगार बना देगा। आप सुनते रहिए एमजेम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: एमजे मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
3: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
2: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या.
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट 8888992688.
4: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515.
5: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
6: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं, रास्ते मुश्किल लगते हैं, मंजिल दूर नजर आती है और हिम्मत भी थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन शायद जिंदगी हमें यही सिखाती है कि रुकना नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता जरूर मिलता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। दोस्तों, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं, चाहे कदम छोटे हो। लेकिन अगर सफ़र जारी है तो यकीन मानिए आप अपनी मंजिल की ओर करीब पहुंच रहे हैं। अगर आज आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हर कोशिश आपको पहले से बेहतर बनाती है। तो आज खुद से बस एक वादा कीजिए, हालात जैसे भी हो हिम्मत नहीं हारेंगे और रुकेंगे नहीं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सुनते हैं एक ऐसा गाना जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा और याद दिलाएगा कि सफ़र जारी रखना ही सबसे बड़ी जीत है। आप सुनते रहिए MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। बस दिल में एक हल्की सी खुशी, एक प्यारी सी मुस्कान और ऐसा लगता है कुछ खास होने वाला है। शायद इसी एहसास को प्यार कहते हैं। जब किसी का एक मैसेज पूरे दिन को अच्छा बना दे, किसी की मुस्कान बिना वजह चेहरे पर मुस्कान ले आए, या फिर कोई पुरानी याद अचानक दिल को छू जाए। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाते हैं। अपनों के साथ बिताया हुआ समय, दोस्तों की मस्ती और कुछ यादें ऐसी होती है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो अगर आज आपके दिल में भी कोई प्यारी सी याद है, किसी खास शख्स की मुस्कान है या बस पुराने दिनों की हल्की सी कसक है, तो ये अगला गाना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अपनी यादों को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है एक ऐसे सदाबहार गाने की जिसे सुनते ही दिल मुस्कुरा उठता है। तो पेश है सुपरहिट सॉन्ग ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे अनमोल नेमत है। जब पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती है, लेकिन जब बारिश कम होती है तो उसकी कमी सिर्फ मौसम में नहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी महसूस होने लगती है। पानी की हर बूंद की अपनी अहमियत है। यही पानी हमारी प्यास बुझाता है, खेतों को हरियाली देता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी इस पर टिका है। इसीलिए जितनी ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करने की है उतनी ही ज़रूरत उसे बचाने की भी है। हम सभी छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बेवजह नल खुला न छोड़े, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें और अगर संभव हो तो बारिश के पानी को सहेजने की कोशिश करें। छोटी सी शुरुआत भी भविष्य के लिए बड़ा फर्क ला सकती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसका ख्याल रखें, क्योंकि अगर आज पानी बचाएंगे तो कल जिंदगी मुस्कुराएगी। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। शानदार संगीत का सिलसिला जारी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। पानी एक ऐसी दौलत है जिसकी असली कीमत अक्सर तब समझ आती है जब उसकी कमी महसूस होती है। हम सभी चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और भरपूर पानी मिले, लेकिन इसके लिए शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। पानी को बर्बाद करने की बजाय उसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जितना पानी चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें, बेवजह नल खुला ना छोड़े, गाड़ी या आंगन धोने में ज़रूरत से ज़्यादा पानी न बहाइए और जहाँ संभव हो पानी का दोबारा इस्तेमाल करें। जैसे सब्जियाँ धोने का पानी पौधों में डाला जा सकता है या बारिश के पानी को इकट्ठा करके काम में लिया जा सकता है। याद रखिए, पानी बचाना सिर्फ सरकार या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प ले, पानी की हर बूंद की कद्र करेंगे, उसे बेवजह बर्बाद नहीं करेंगे और जहाँ भी संभव होगा वहाँ उसका दोबारा उपयोग करेंगे, क्योंकि आज बचाया हुआ पानी कल किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसी उम्मीद और इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले शानदार गाने की ओर। बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए और पानी बचाने का संदेश अपने परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचाइए। सुनते रहिए MJ 90.8 FM, साथ तो बात है।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: पीछे।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश की हर बूंद अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है, लेकिन सोचिए अगर ये अनमोल बूंदे यूं ही बह जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आज बात करते हैं एक ऐसी छोटी सी पहल की जो भविष्य को बेहतर बना सकती है। मैं बात कर रही हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, यानी बारिश के पानी को सहेजना। बारिश का पानी अगर सही तरीके से इकट्ठा किया जाए तो वही पानी आगे कई कामों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलती है और पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों को भी राहत मिल सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर घर, स्कूल, सोसाइटी या ऑफिस में इसकी व्यवस्थिता हो तो बारिश का पानी बेकार बहने की बजाय भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। आइए आज एक छोटी सी शुरुआत करें, अपने घर और आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि जब हर घर एक कदम आगे बढ़ाएगा तब मिलकर हम पानी की हर बूंद को बचा पाएंगे। याद रखिए, बारिश की हर बूंद अनमोल है, उसे सिर्फ गिरने मत दीजिए, उसे सहेजिए भी। ऐसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। सुनते रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, पानी बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनिए और ऑफ कोर्स जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
2: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
2: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
1: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला आंतररुग्ण सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या
2: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतर रुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688.
3: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
4: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
5: एडमिशन ओपन फॉर बी ए एम सी जे, बी ए मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, बी ए इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा और एम ए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.
6: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
7: इंजिनियरिंग ची डिग्री है पण हाता जॉब नाही ना,
8: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रैक्टिकल स्किल्स.
7: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशन से अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेंसर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इंस्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग.
8: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
7: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

0: कि आज का हमारा साथ, हमारी बातें और आपके पसंदीदा गाने आपकी शाम को और भी यादगार बना रहे होंगे। आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 FM और मैं हूं मनीषा आपके साथ। अगर दिन भर की थकान थी तो उम्मीद है कि यहाँ बिताए इन पलों ने आपके चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान ज़रूर ला दी होगी। ज़िंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, इसलिए हर सुबह नई उम्मीदों के साथ उठिए, पूरे मन से काम कीजिए और शाम को अपने अपनों के साथ कुछ सुकून भरे पल ज़रूर बिताइए। यही छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर आज का कोई गाना या कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर साझा कीजिए। आपकी मुस्कान ही हमारे इस सफ़र की सबसे बड़ी ताकत है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आपकी आरजे मनीषा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शाम के साथ, नए गानों के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट शो दिल से, ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ ही तो बात
1: पाड़ी प्राणायाम चारो ज्ञात खास काळजी एमजीएम पेट केयर पेट क्लिनिक आरोग्य तपासणी उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केयर।
2: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, छत्रपती संभाजीनगर।
3: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
4: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
3: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च एमजीएम यूनिवर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।

126 साल में जो नहीं हुआ था वो इस साल हुआ है। क्या हुआ? आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। तो क्या हुआ? वो यही हुआ कि भाई सूखा सूखा सूखा जून हमारा गुजर गया। आई नो अभी जुलाई का महीना शुरू है, लेकिन 1 जून से 30 जून के दरमियान कितनी बरसात हुई वो हम सभी को पता है, और आधा जून तो पूरा गर्मियों में हमारा निकल गया था। और ऐसी सेम सिचुएशन आ गई थी 1901 में। जी हाँ, 1901 में भी जून का महीना कुछ ऐसे गुजरा था जब सबसे कम बरसात हुई थी, 40% से भी कम। तो उसके बाद 2026 में ये ऐसा महीना गुजरा है जिसमें सेम सिचुएशन आई है और आधे से ज्यादा जून बिना बरसात के गुजरा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 126 साल का सबसे सूखा जून ये 2026 का था। वाह, कॉम्बिनेशन तो है 126 और ये 2026। अब जुलाई का महीना शुरू है, आई होप कि इस महीने में तो भी अच्छी खासी बरसात शुरू हो जाए और जो प्लान हमारे अधूरे थे मानसून में बाहर घूमने के वो भी मुकम्मल हो जाए। तो बताइए कहाँ घूमने का प्लान है आपका? DM ऑन इंस्टा RG अदनान एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो अभी प्ले होगा। तब तक स्टे ट्यून।

0: अकेला है।
1: इस महीने जुलाई से आपको कुछ चीजों के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, क्या कुछ है बताऊंगा ना। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आधार के मामले में, देखो आधार कार्ड में ना, तो अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करना होता था तो वहाँ पर 75 रुपीज चार्जेस आपको पे करना पड़ते थे, याद है। तो अब ये चार्जेस पे करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम फ्री फ्री और फ्री तरीके से आप अपना आधार कार्ड का ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, यानी कि अपडेट कर सकते हो। और ये जो फ्री वाली ऑफर है ये 31 दिसंबर 2026 तक शुरू रहेगी, तो इस साल के एंड तक ये ऑफर दी गई है। तो अगर आपको भी आपके आधार कार्ड का मेल आईडी चेंज करना है तो बिल्कुल कीजिएगा फ्री में। और हाँ, एक और चीज में थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है, वो है पासपोर्ट निकालने का। पहले 1500 रुपए इसकी फीस थी, अब ये बढ़कर 2500 रुपए हो गई है इस जुलाई मंथ से। और आपको तत्काल में पासपोर्ट चाहिए तो जिसकी पहले फीस थी 3500, वो अब हो गई है 5000 रुपए फीस। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस है जो कि अभी इस महीने से शुरू हो गए हैं। तो याद रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा आरजे अदनान के साथ।

0: गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से, आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ये गाना तो आपने सुना ही होगा।
1: ओए रत्ता जोगी, ओए रत्ता जोगी, ओए, ओए, ओए, ओए,
0: असल में गाना हीर से रांझे की तरफ इशारा कर रहा है। जब रांझा को हीर नहीं मिली तब वो उसके प्यार में जोगी बन गया, फकीर बन गया। इस बात पर कई सारे गाने बने हैं। रमता जोगी ये उसमें से एक गाना। रमता जोगी का मतलब था वो फकीर, वो साधु जो कि सिर्फ घूमता रहता है, कहीं रुकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि हीर की शादी कहीं और करवा दी गई थी और इस गम में रांझा जंगलों में घूमता रहा और एक बाबा के पास आ पहुंचा और उनसे कहा कि मुझे मेरे हीर से अलग कर दिया गया है, अब मैं समाज को छोड़ना चाहता हूँ, मैं बस जोगी बनना चाहता हूँ। सोचिएगा कि अगर आपको बहुत प्यास लगी हो, आप रेगिस्तान में हो और मैं वहां पर आऊँ और मैं आपको पानी ना दूँ, बस कहूँ कि यार पानी पीने से प्यास बुझती है, सुकून मिलता है, ठंडक महसूस होती है, तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना। जब तक आप खुद वो पानी नहीं पियेंगे तब आपको पानी की अहमियत समझ में आएगी कि किस तरीके से सुकून मिलता है। प्रेम का भी कुछ ऐसा ही है, जब तक प्रेम का प्याला आप नहीं पियोगे तब तक आपको प्रेम क्या है यह समझ नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है, सो कुछ ऐसी कहानी थी इस रमता जोगी गाने की। सो चलिए फिर हम एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट गाना। गानों के किस्सों में और भी हम ऐसे कई सारे गाने आपके सामने लाएंगे और उसके अलग अलग किस्से हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: बच के रहना रे बाबा, बच के रहना है, वरना आरटीओ तो आपको देख ही रहा है। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और बच के रहना मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो, हम सभी को अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगानी थी और इसकी डेडलाइन बढ़ते बढ़ते सहूलत देते देते आरटीओ भी थक गया था और उन्होंने फाइनली 30 जून की डेडलाइन दी थी। और अब जून खत्म हो चुका है, अब शुरू होगा आरटीओ का एक्शन मोड। यानी जिस गाड़ी पर ना तो HSRP नंबर प्लेट आरटीओ को नजर नहीं आएगी, उनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे और फाइन वसूल करेंगे। देखो भाई, जब आपके पास वक्त था तब उन्होंने कहा था बड़े प्यार से, फिर थोड़ा स्ट्रिक होकर और थोड़ा टाइम भी देकर कि आप अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट बिठाइएगा। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं यार, बिठाएंगे ना, अभी क्या ही जरूरत है। अब देखते देखते डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है और अब नंबर प्लेट कैसे बिठाओगे भाई? उसके लिए तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी बंद है क्योंकि डेडलाइन खत्म हुई। तो आप करे तो करे क्या, बस फाइन भरो आप, उसके बाद क्या ही कर सकते। तो इसलिए कह रहा था कुछ काम वक्त पर ही होने चाहिए, वक्त गुजरने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो आरटीओ की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, सो फेस कीजिएगा इसको और सुनते रहिएगा।
1: आल्या भाऊ आमच्या बहिणी,

सुनते मत, मला सुन।

0: इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ देते हैं। You are listening MGM 90.8 FM. एक रिपोर्ट में ऐसा है कि 2026 और 27 में इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, तो उसके अंदर तकरीबन 5 से 10 या 20 प्रतिशत इंक्रीमेंट हो सकती है इस साल। अभी इंक्रीमेंट का सीजन है और ये होने भी वाली है, लेकिन ये होने के बावजूद भी बहुत सारे कंपनियों के एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ देते हैं अच्छी पगार होने के बावजूद भी। 55% लोकांचा असं म्हणणं आहे की त्यांना आता हे ऑफिस सोडायचं आहे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, एम्प्लॉई ना पगार बढ़कर भी मिलता है लेकिन जॉब छोड़ देते हैं? बिकॉज वहाँ का ऑफिस कल्चर और वहाँ का सो कॉल्ड बॉसगिरी वाली चमचागिरी, इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ना प्रेफर करते हैं कि भाई आप मुझे पगार कितनी भी दो लेकिन हम ऐसे कल्चर में काम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में हमें देखने को मिलता है। हालांकि सो कॉल्ड बॉस लोग ऐसे होते कुछ कुछ जो खुद को ना राजा समझते, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि यार उन्हें लगता है कि वो उस कंपनी के राजा है और हम उनके पास एम्प्लॉय बोल के काम नहीं करते, एक नौकर बोलकर काम करते हैं और गदा मजदूरी जैसी मजदूरी वो करवाते हैं। इस वजह से एम्प्लॉयज को भी लगता है भाई 4 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। तो इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज इंक्रीमेंट के बावजूद भी कंपनी छोड़ना प्रेफर करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा ना, क्योंकि कॉर्पोरेट में यह सब तो चलता है भाई और सभी का दर्द सेम होता है। क्या है ना, सीनियर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरा एम्प्लॉय ना बस काम करते रहना चाहिए, भले मैं उसको पगार दूं या ना दूं, और उसने बस चापलूसी करनी चाहिए या फिर मेरे पास आकर हाजी हाजी करना चाहिए। तो ये ईमानदार एम्प्लॉय को और मेहनत करने वाले एम्प्लॉय को ये नहीं जचता है। तो आपका क्या इरादा है, इस सीजन में इंक्रीमेंट के बाद आप जॉब छोड़ोगे या उसी कंपनी में जॉब करोगे? डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून्ड। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
2: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
1: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।
3: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
5: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: ये सो कॉल्ड आशिक प्रजाति, जी हाँ मैं आशिक प्रजाति इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी एरिया में शुरू हो जाते हैं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। देखो मैं पहले बता दूं कि मैं कुछ प्यार का दुश्मन नहीं हूँ और मैं तैयब अली भी नहीं हूँ।
1: तैयब अली प्यार का दुश्मन,
0: बट उन कपल्स का मुझे बहुत गुस्सा आता है जो पब्लिक प्लेस के ऊपर सरेआम शुरू हो जाते हैं कुछ भी चीजें करने के लिए। एक ऐसा ही केस सामने आया अपने बीबी का मकबरा, अपना टूरिस्ट प्लेस है भाई, वहाँ पर फैमिलीज आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग घूमने आते हैं, तो कई कई कपल्स बसून झाड़ा खाली प्रेम कर देते। अरे भावनो बहिनो, झाड़ा वर प्रेम करा, झाड़ा खाली बसून प्रेम करू नका, पण हे ना कळतच नाहीये। आणि फक्त आपलं बीबी का मकबराच नाही, तुम्ही आपल्या शहरातील वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी जर गेलात ना, तर तुम्हाला हीच परिस्थिती बघायला मिळणार आहे। सो आप सिद्धार्थ गार्डन में जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे नजारा मिलेगा। बामू यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड में जंगल है ना, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तो बहुत सारे कपल्स आपको दिखाई देंगे। पता नहीं ऐसी क्या गर्मी होती है जो कि पब्लिक प्लेस पर ही उनकी निकलती है। भाई किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत बुरा फंसोगे। और ऐसे कुछ कपल्स पकड़े गए थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह तो कुछ जो कुछ होगा वो होगा। बट मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक प्लेस पब्लिक की होती है, वहाँ पर आपके प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने की प्लेस नहीं होती। तो इतनी बात तो समझिएगा। स्टेडियम।

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
2: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाइप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
3: एडमिशन ओपन फॉर बी ए एम सी जे, बी ए मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, बी ए इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पी जी डिप्लोमा और एम ए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.
4: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
5: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स.
4: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनियरिंग.
5: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
4: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट and control engineering, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 9404474266 or visit mgmu.ac.in.
1: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
2: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
3: एडमिशन ओपन फॉर बीए एमसीजे, बीए मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, बीए इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा और एमए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट एमजीएम कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.
4: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
5: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स.
4: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याचबरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग.
5: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE.
4: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.
6: अरे अरे, जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, घर को पैर बताए, आंख के अंधे कमल नयन कहलाए.
7: जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, घर को पैर बताए, ये आंख के अंधे कमल नयन कहलाए.
6: ऐसन बिन कपड़ा, कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल, दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन. मागा रे सानी धा.
8: अरे बारे मालिक,

0: अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल,
1: खूब
0: सर वालों के ऊपर मिट्टी, गधे लगाए तेल, अरे वारे मालिक, अरे अरे घर को बाहर बाहर को घर, सड़क पे बिस्तर लंबी लोट लगाए, पत्थर पूजे और हमको ठुकराए, तन बिन कपड़ा कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन, मागादे सानी धापा माँ, अरे बारे मालिक।

वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, हम जैसों के पैर में बेड़ी लंगड़ा करे कुलेल। अरे बारे मालिक, अरे अरे पाई नकौड़ी, नाम करोड़ी, काट की घोड़ी, सरपट दौड़ी जाए, अजब अजूबा जो देखे रह जाए, कन बिन कपड़ा, धड़कन बिन दिल, पहले बुढ़ापा,

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

एक दफा की जो हारा सो हारा, आज मोल तोल में दिन बीते तो ताजा हो गए गच्चा। अरे लाई लो दिल लाई लो, ये दिल का हीरा सच्चा, न पक्का है न कच्चा।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत।

ಇನ್ನಾಯ ಅದು ಯ ಕಚತುರ ನಾರ

ఏక పేరైనా, యా గోడా బోల్లా, యా చతుర బోల్లా, యక చతుర నా.